विश्राम मंदिर तया तत्सनातनो तनोर्मदीष्यं भक्तिरसामृत सिंधु भवतु सदायं क्रमोदायं भक्तिरसामृत सिंधु चरत परिभूत काल जाल धियं भक्त्या मकरान शीलता मुक्तीन अधिकान नमस्यामि भक्तिरसपस्तुतिरखिल भगवन मंगल प्रसंगस्य अज्ञेनापि मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाहयम् एतस्य भगवद भक्ति रसामृतोपयोनिधे चत्यार खलु वक्षन्ति भागा पूर्वा दयक्रमा तत्र पुण्य विभागेष्मिन् भक्ति भेद निरूपति अनुक्रमेण भक्त्यव्यं लहरीनां चतुष्टयम् आद्या